0: and playing our deadly indigenous. So please sit back and relax and don't touch that dial. Stay tuned to Packham. It's awesome.
1: Hi, Princess. Bir adam patlıyor ya.
2: आपसे मतलब?
1: Have a drink with us, babe.
2: No, thank you.
3: Drive पर चलोगी?
2: मेरी शामत आई है क्या?
3: नहीं, darling. हम शहजादों का दिल आ गया है तुम पर.
2: मुझे रानी समझ रखा है क्या? वो लड़की पागल होगी जो तुम जैसे जानवरों के साथ जाएगी.